पसीना क्या बताऊं तेरे दिल ने मेरे दिल को प्यार भरा पैगाम दिया है।

में किसके वास्ते हूँ मैं, न जाने इनमें कौन है मेरे लिए। जवानियाँ ये मस्त मस्त बिन पिए जलाती चल रही है राह में दिए, न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं।